0: प्रमोद। और आज के अंक में हम आपको देंगे हमेशा की तरह देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे आज और जानी मानी शख्सियतों को हम याद करेंगे। मौसम का भी हाल जानेंगे आज। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार प्रमोद।
1: नमस्कार फरहत एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन वी गिव इन द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट।

0: as well as some historical information related to this day, that is the 5th of July.
1: जी, और आइए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं प्रमोद उड़ान योजना की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जिससे भारत के नागरिक उड्डयन अवसंरचना और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना की शुरुआत भारत की क्षेत्रीय संपर्क के अगले अध्याय की शुरुआत होगी। श्री नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई यह योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती प्रदान करेगी, और उन्होंने ये भी कहा कि यह योजना 100 से ज्यादा नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास
3: who won this title 4 years ago is also out who up this form, but she came unstuck against the 25th seed Elise Mertens of Belgium, who's matched a previous record here at Wimbledon of reaching the fourth round. Mertens won in straight sets 7-6, 6-1, and afterwards she admitted it's the biggest win of her career.
4: Is this the biggest win of your career?
5: Yeah, definitely one of the biggest wins of my career, especially here at Wimbledon. I had some double success here at Wimbledon already, right. So just very, very pleased about my performance today.
4: Well, I was going to say that you've won the doubles here twice. You're now into the fourth round for the fourth time. What does Wimbledon mean to you?
5: I mean, it's one of the most, it's the most iconic tournaments, the most iconic venue. It's just, with so much history, especially also on this court. So, you know, I'm taking it all in today.
3: And quite rightly, she should. Other wins in the women's draw, a big win for Madison Keys, who came from a set down and knocked out last year's finalist Amanda Anisimova in three sets on centre. Marta Kostyuk made it through past American Emma Navarro in three sets, as too did Marie Buskova against Ludmila Samsonova. Well, in the men's draw, the second seed and French Open champion Alexander Zverev came through in straight sets. The fifth seed Alex de Minaur was also through to the second week, and they're joined by the ninth seed Italian Flavio Caboli.
6: So lots of the winners then from day six of the championships, Delith, but the return of the Williams sisters has been the big topic of interest this week, but we won't get that last hurrah.
3: I know, yes, a huge story all week, as you can imagine, Lee. No, the sisters, who are the six-time doubles champions here, were expected to make their much-anticipated comeback a little later on Saturday. They had to withdraw from the event, though, as Serena Williams failed to recover from a knee injury that she picked up in her singles comeback match against Maya Jonk on Tuesday night. In a statement, Serena said she was heartbroken, but that, to quote, coming back to compete again has been a gift, and the opportunity to play alongside Venus once more meant the world to me. I did everything I could to be ready, but unfortunately my knee just isn't ready to compete. So it wasn't to be for the Williams sisters, Lee, but plenty else happening on a dramatic day here.
6: Yes, absolutely. I know many will be disappointed not to see those great champions in action one more time. But yes, we've been really treated, haven't we, today? Della, thank you very much. That is it from Wimbledon Update for today. Join us next time.
7: Akashwani Coimbatore, 103 FM, Kelunga Rasinga.
8: நேர்கள் இதுவரை கேட்டது விம்பிள்டன் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் 2026 போட்டியின் தினசரி கண்ணோட்டம் டெல்லியிலிருந்து. ஆகாஷவாணி கோயம்புத்தூர் 103 FM-ல வணக்கம் கோயம்புத்தூர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஷோ நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து கேட்கலாம். அந்தியோதய அன்ன யோஜனா பயனாளிகளுக்கான உணவு தானிய உரிமையை திருத்தி அமைக்க எந்த சட்ட திருத்தத்தில் அரசாங்கம் வந்து முன்மொழிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம். ஸோ அதுக்கு நிறைய நேர்கள் சரியான பதில்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அந்த வரிசையில பார்க்கலாம் யாரெல்லாம் பதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறப்போ, கோணமலை ஆனந்தன், சிறுமுகை சோமு கலைவாணி, வி பிரபு ராஜபாளையத்திலிருந்து, ஐயனார் முதுக்குடியிலிருந்து உமா கணேஷ் சிறுமுகையிலிருந்து சொல்லியிருக்காங்க, கோவை மேட்டுப்பாளையம் ஜோதி ரமேஷ் பதில் சொல்லியிருக்காங்க, குகன் நஞ்சுண்டாபுரத்திலிருந்து குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட் மார்னிங் விஷயத்தோடு சேர்ந்து

0: Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
1: Jodhpur mein naye airport

0: आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द फाइनल टी20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ऑफ द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026। Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball 20.
3: नमस्कार, First Ball 20 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुनीश जॉली और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम एक बार फिर से पहुंच रहे हैं इंग्लैंड के लंदन में और वहां लॉर्ड्स का मैदान इंतजार कर रहा है। एशेज की पुरानी राइवलरी कह लीजिए जो टी20 क्रिकेट में आ गई है, या फिर दिग्गज टीमें जिनको बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, एक होम टीम है इंग्लैंड और दूसरी ऑस्ट्रेलिया और आज विमेन्स वर्ल्ड टी20 का फाइनल है लॉर्ड्स में। मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद है।
4: ओ मनीष, आई मस्ट टेल यू द पैल्पिटेशन इज रियली हाई बिकॉज़ ऑब्वियसली देयर इज लिटिल हिट एंड मिस। We are missing India at the moment, but right now we will only talk about Australia and England. Australia, pure dominance, super aura, and today, because it's Lords, a lot more to happen, but we have much more to talk about in the studio, because we have our super, super experts. First of all, we have Chetan Sharma, former Indian fast bowler, and needless to say, 1987's World Cup head.